मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: प्रार्थनया मनः शान्तम् अभवत्। इदानीम् एकाग्रतया अभ्यासं कुर्मः। तर्हि इदानीम् अभ्याससमयः, आगच्छन्तु। अद्य पश्यामः समयं कथं वदामः। प्रश्नः भवति कः समयः, याने क्या समय हुआ है। संख्या गणना भवति एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। समझिए कि अब 5 बजे हैं। क्या समय हुआ? 5 बजे हैं। संस्कृत में बोलेंगे, पहले प्रश्न पूछेंगे कः समयः, उत्तरं पञ्चवादनम्। कः समयः? पञ्चवादनम्। क्या समय हुआ है? 5 बजे हैं। कः समयः? पञ्चवादनम्। कः समयः? षड्वादनम्। 6 बजे हैं। कः समयः? दशवादनम्। 10 बजे हैं। आया समझ में, है ना? वैसे ही 5:30 बजे है, कैसे बोलेंगे? क्या समय हुआ है? 5:30 बजे हैं। कः समयः? सार्धपञ्चवादनम्। कः समयः? सार्धपञ्चवादनम्। 6:30 बजे हैं। कः समयः? सार्धषड्वादनम्। 7:30 बजे हैं। कः समयः? सार्धसप्तवादनम्। समझिए कि 5:15 बजे है, 5:15 हुए हैं, 5:15। कः समयः? सपादपञ्चवादनम्। सपादपञ्चवादनम्। 6:15 बजे है। कः समयः? सपादषड्वादनम्। 10:15 बजे है। कः समयः? सपादशवादनम्। पाद यानि क्वार्टर, एक चतुर्थांश हिस्सा, तो अर्ध यानि अर्ध, अतः पञ्चवादनम्। सपाद पञ्चवादनम्, सार्ध पञ्चवादनम्। 6:15 बजे है, वो कैसे बोलेंगे? पाद ऊन अथवा पादोन षड्वादनम्। क्वार्टर लेस, हाँ 15 मिनट कम है ना, इसलिए बोलेंगे पाद ऊन, ऊन यानी लेस, पादोन षड्वादनम्। तो क्या क्या हुआ? पंचवादनम्, 15 मिनट के बाद सपाद पंचवादनम्, और 15 मिनट के बाद सार्ध पंचवादनम्, और 15 मिनट के बाद पादोन षड्वादनम्, और 15 मिनट के बाद षड्वादनम्। ठीक है, एक बार समय बता सकेंगे तो फिर अपनी दिनचर्या बता सकेंगे। कैसे? मम संस्कृत वर्गः पञ्चवादने भवति। समयः कः? पञ्चवादनम्। परन्तु संस्कृत वर्गः कदा? पञ्चवादने। अत्र एकः बालकः अस्ति, तस्य नाम दिनेशः। तस्य दिनचर्या कथम् अस्ति? उसके दिन में क्या क्या होता है, उसकी दिनचर्या कैसी है, देखेंगे। बालक, भवतः नाम किम्?
1: मम नाम दिनेशः।
0: भवान् कदा उत्तिष्ठति?
1: अहं प्रातःकाले 5 उत्तिष्ठामि।
0: उत्तमम्, भवान् उत्तमः बालकः। अस्तु, भवान् कदा सूर्यनमस्कारं करोति?
1: अहं 6 सूर्यनमस्कारं करोमि।
0: उत्तमम्, अनन्तरं भवान् स्नानं करोति किम्?
1: आम्, अनन्तरम् अहं 7 स्नानं करोमि।
0: उत्तमम्, अल्पाहारं कदा स्वीकरोति?
1: अहं 8 अल्पाहारं स्वीकरोमि।
0: विद्यालयं कदा गच्छति?
1: 9 विद्यालयं गच्छामि।
0: उत्तमम्, तर्हि दिनेशः प्रातःकाले पञ्चवादने उत्तिष्ठति, नववादने विद्यालयं गच्छति। उत्तमं, कृपया दिनेश भवान् मां पृच्छतु।
1: भवती कदा भोजनं करोति?
0: अहं मध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भोजनं करोमि।
1: क्रीडाङ्गणे कदा गच्छति?
0: अहं सार्धपञ्चवादने क्रीडाङ्गणं गच्छामि।
1: गृहं कदा आगच्छति?
0: क्रीडां क्रीडित्वा अहं सप्तवादने गृहम् आगच्छामि।
1: रात्रौ भोजनं कदा करोति?
0: सार्धसप्तवादने भोजनं करोमि।
1: शयनं कदा करोति?
0: शयनं तु रात्रि समये सार्धनववादने करोमि। तर्हि एषा दिनचर्या। आप भी अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं। कदा उठते हैं, कदा चाय पीते हैं, कदा ऑफिस जाते हैं, कदा यानी कब। ओके, तो एक छोटा सा गीत देखते हैं। वह बिल्कुल सूर्य के बारे में। उदयति सूर्यः रजनी याति, विकसति पुष्पं पवनो वाति, प्रसरति गंधः गुंजति भृङ्गः, उदयाकाशे अभिनव रङ्गः। एतत् सूर्योदयस्य वर्णनम् अस्ति। आगच्छतु, अत्र आगच्छतु, उपरि पश्यतु। उपरि कः अस्ति? उपरि आकाशः अस्ति। आकाशे कः अस्ति? आकाशे सूर्यः अस्ति। सूर्यः किं करोति? सूर्यः प्रकाशं ददाति। सूर्यः कदा उदयति? सूर्यः प्रातःकाले उदयति। सायंकाले सः अस्तं गच्छति। सूर्यः प्रतिदिनं प्रातःकाले उदयति। अतः वयं सूर्यस्य स्तुतिं कुर्मः। ओ

0: सुते। धन्यवाद। आज का प्रश्न है, भवान कदा उत्तिष्ठति, आप कब उठते हैं सुबह में। उत्तर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। अभ्यास अभवत। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रं पठामः। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्री रामरक्षा स्तोत्रस्य श्लोक संख्या 11-15 पर्यन्तं पठामः।
1: श्री गणेशाय नमः।
2: श्री गणेशाय नमः।
1: पाताल भूतल व्योम चारिणश्चद्मचारिणः। न द्रष्टुमपि शक्तास्ते। रक्षितं राम नामभिः। रामेति राम भद्रेति। रामचन्द्रेति वा स्मरन्। नरो न लिप्यते पापैः। भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति।
2: जगज्जेत्रैकमन्त्रेण
1: रामनाम्नाभिरक्षितम्। यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदम्
2: यो रामकवचं स्मरेत्।
1: अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः।
2: तथा लिखितवान् प्रातः
1: प्रबुद्धो बुध कौशिकः।
0: इस सप्ताह में हम इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे। अगले सप्ताह में हम श्लोक संख्या 16-22 तक के श्लोक बोल के उनका अभ्यास करेंगे। श्लोक पठनम बहु सम्यक अभवत। आज संभाषण का 11वां दिन है। आपके प्रतिस्पंद से पता चलता है कि आप संभाषण समझ सकते हैं, मगर संभाषण नहीं कर सकते, ऐसे कई लोगों ने बताया है। हाँ, तो इसलिए क्या करे, क्या उपाय है? तो छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत कीजिए और वेणुध्वनि का कार्यक्रम ध्यान से सुनिए। श्वः वयम् सूर्य नमस्कार विषय के बारे में बोलेंगे, सूर्य देवता के मंत्र भी सीखेंगे, तो जरूर आइए, श्वः अवश्य मिलामः। शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्ति ही भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: रात्रीमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली म्हणून धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: प्रवीणता का महत्व, मधुर गीतों की तान हो या मन महावन नृत्य, मन को कितना सुकून देते हैं. कला में प्रवीण होने का आनंद कुछ और ही होता है. जैसे मृग में कस्तूरी के सुगंध की महत्ता, वैसे ही कला में प्रवीणता का महत्व. कला जगत में अमर बनाने वाला चमत्कारी गुण है प्रवीणता. प्रवीणता अर्थात किसी कला व विषय में महारत हासिल कर लेना. कार्य को बिना कमी के श्रेष्ठता व सफलता के साथ करना. कम समय, साधन और ऊर्जा लगाकर भी कार्य को उत्तम से उत्तम रीति से करना. कर्म को कलाकार रूप देना भी प्रवीणता है. कला या विषय के अध्ययन में प्रवीणता भरने से आनंद मिलता है. इस गुण को कार्य में लगाने से उत्पाद की श्रेष्ठता भी बढ़ती है और उत्पादन न्यूनतम से अधिकतम हो जाता है. इस गुण का धनी काम को इतना सहजता से करता है जैसे मक्खन से बाल निकालना. किसी अध्ययन में विषय में प्रवीण अध्यापक विद्यार्थियों को सहजता से उस विषय को समझाओ पढ़ा देता है. विषय की गहरी समझ और उसका निरंतर अभ्यास छात्र को विषय में प्रवीणता दिलाता है. कला की प्रवीणता तीनों कालों और तीनों लोकों में प्रसिद्धि और लोकप्रियता भी दिलाती है. कलाकार का सम्मान कला की प्रवीणता हासिल करने में है. कला का संसार बड़ा अनूठा है, उसमें कदम रखने के लिए चाहिए प्रवीणता. जो अदाकार अपने पात्र के साथ एकरस हो जाता है, जिसे कलाकार भूमिका को जीवंत प्रस्तुत करता है. अमिताभ बच्चन जी किसी भी पात्र को साकार करने में इतने प्रवीण हैं कि वे फिल्म जगत के महानायक सिद्ध हुए हैं. अतः प्रवीणता को अपनाइए और जग प्रसिद्ध बनिए. ऐसी हमारी शुभकामना.

0: रेणुधुनि 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: मीडिया से बात करते हुए पुदुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इंपॉर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया।

0: लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एल ई कनसु।
3: के एल ई फार्मसी कॉलेज बेलगावी 2026-27 प्रवेश प्रारंभ। विमान निल्दाण रस्ते बसवन कुर्ची बेलगावी अत्याधुनिक सौलभ्य कैंपस के कॉलेज स्थलांतरगे विविध कोर्स बिफार्म, फार्म डी, एम फार्म, पीएच डी सेर फार्मसी क्षेत्र उन्नत शिक्षण पड़ी सवर्ण अवकाश। कॉलेज प्रमुख विशेषते 100 वर्ष शैक्षणिक इतिहास अनुभव विश्वद्यंत 3,000 हल्य व्यार्थी बलिष्ठ ने ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ

भी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं. But if I don't come back, दोबारा शादी मत करना.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विणुध्वनि 90.4 FM के एल ई कनसु भाषा संगम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, हर बार की तरह हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा। भारत के अग्रणी मेमोरी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, यानी स्मरण शक्ति और कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इन विषयों में वे प्रशिक्षक है। सबसे ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले ये एकमात्र भारतीय है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आई एम श्योर आप सभी को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील होगा। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का शो।
1: सर, विणुध्वनि के स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ना कि सिर्फ स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेके चिंतित है या फिर वो भूल जाते हैं, बल्कि बड़े भी बहुत से ऐसे बातें रहती है जो भूलते आते हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई अगर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे मिले आज, तो एक 5-6 महीने के बाद में अगर आप मिलेंगे तो मैं शायद ये सोचूंगी कि हाँ, इनको कहीं तो देखा था, कहाँ देखा था, मतलब बहुत बार मैं सोचूंगी वो। और उसके बाद में मुझे ये सिर्फ याद आएगा शायद कि हाँ, इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, बट नाम नहीं याद आएगा।
2: सही है।
1: तो ऐसी बहुत सी बातें होती रहती है हमारी लाइफ में और इसको हम बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, हालांकि ये कभी बीमारी भी हो सकती है, ये अभी हम जान लेंगे आपसे बात करते करते। और ये हम कैसे इम्प्रूव करेंगे, वो अगर इम्प्रूव होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे वो हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मेमोरी मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मेमोरी।
2: मेमोरी में 3 स्टेजेस होते हैं मैम। पहले तो रिसेप्शन होता है, मतलब अभी मैं आपका बात आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पहले सुनना है, रिसीव करना। दूसरा, अपना ब्रेन के अंदर स्टोर करने का, ना दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। तीसरा जो है ना, जो और कोई पूछेगा तो आपने क्या सुना, क्या पढ़ा, फिर उनको बताना होगा या लिखना होगा, मतलब रिकॉल, मतलब रिसेप्शन, स्टोरेज एंड रिकॉल, ये 3 स्टेज होते हैं मेमोरी का। और आजकल का बच्चे बहुत सारे ये कंप्लेंट करते हैं कि मैं स्कूल जाते हूँ मगर मुझे लेसन तो समझ में आता है मगर बिल्कुल हमें याद नहीं रहता। और कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक से नंबर नहीं लाते, और टीचर्स ये कंप्लेंट करते हैं कि जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, बच्चे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या, हर पेरेंट का एक ही इच्छा है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल जाए और अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा नंबर लाए। ओके, फाइनली आप जो कोई भी है, फाइनली बच्चों का तरक्की, बच्चों का प्रोग्रेस करने का, और उसमें मेमोरी प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। ओके, वेदर यू आर स्टूडेंट, ओके, आपको टेक्स्ट बुक याद करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना होगा, या आप प्रोफेशनल है तो कोई प्रेजेंटेशन होगा, कोई स्पीच होगा, कोई यू नो नेताजी है उनको 2-3 पेज का स्पीच याद करना होगा, या आपको न्यूमेरिकल डेटा याद करना होगा, या यू नो एज यू कीप ग्रोइंग ओल्डर रेट। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको चश्मा नहीं मिलता, कहाँ रखे हम लोग, कभी कभी मोबाइल को मिस्ड कॉल देना पड़ता है, कभी कभी हमको गाड़ी का चाबी नहीं मिलती, राइट, कभी पेन नहीं मिलता, कभी औरत लोग ना देसे हम लोग ना दूध रख के स्टोव के ऊपर भूल जाते हैं। ऐसा हर इंसान का कोई ना कोई मेमोरी प्रॉब्लम है। तो ये हमको सीखना होगा मेमोरी, हम लोग ये क्या, हाउ टू इंप्रूव दिस मेमोरी, इफ वी कैन लर्न दिस, एवरीवन कैन हैव सुपर मेमोरी।
1: तो ये इम्प्रूव हो सकती है,
2: अब्सोल्युटली हो सकती है। सो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि इफ आई गॉट अ गुड मदर गुड फादर, मतलब दोनों पढ़े लिखे हैं, हम लोग अच्छे खानदान के हैं, तो मेमोरी पैदाइश मतलब बर्थ से होती है। तो ऐसा होता तो अब्दुल कलाम जी, उनका मम्मी पापा तो नहीं पढ़े थे, और वो एक छोटा सा गांव रामेश्वर में पैदा हुआ था, बचपन में पेपर भेज रहा था, एक मस्जिद के बगल में गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, हाउ ही वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज नंबर 1 प्रेसिडेंट एंड देन वो साइंटिस्ट बने। इसका मतलब क्या, मेमोरी डजंट कम बाय बर्थ, मेमोरी इज अ स्किल। जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, मेमोरी एक स्किल है। यदि आप जानेंगे, टेक्निक करेंगे, प्रैक्टिस, इफ यू कैन मास्टर, एवरीवन कैन परफेक्ट दिस मेमोरी। उम्र की बिल्कुल नहीं है, छोटा बच्चा हो या मिडिल एज में हो, ओल्ड एज में हो, एनीवन कैन स्टार्ट एंड लर्न दिस मेमोरी।
1: ग्रेट, सुनके तो बड़ी खुशी हुई सर।
2: yes.
1: क्योंकि कौन से भी एज में रहे हम अपनी मेमोरी डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप थोड़ा अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं।
2: हम एक्चुअली हैदराबाद के एक छोटा सा एक गांव है, उसका 100 किलोमीटर का, और जब मैं पैदा हुआ मेरा घर का, तो आज आई गॉट 5 बहनें और एक भाई, मैं सबसे छोटा था। 12 साल तक जब तक मैं 12 साल था तब तक स्कूल भी नहीं गया। मतलब इतना पुअर फैमिली था, मैं एक शॉप में काम करता था बिकॉज इतना सारे बच्चे थे। और 12 साल का उम्र में मैं गया डायरेक्टली 7th क्लास, 10th क्लास खत्म हो गया तो उसके बाद में खाना नहीं था घर में, वहां से भाग गया मैं मद्रास, अब जो चेन्नई बोलते हैं।
1: अच्छा।
2: और उसमें एक एयरफोर्स का मेस था, वहां टेबल क्लीन करना, वैसा हमारी जिंदगी शुरू हुआ था। उनको देखते देखते मैंने सोचा यार हाउ कैन आई बिकम ए टेक्नीशियन, वो एयरमैन बनो, वहां से फिर एयरफोर्स का पायलट बना, मतलब उससे स्क्वाड्रन लीडर बना, इज इक्वल टू मेजर इन द आर्मी। ओके। और मैं एयरफोर्स में रहता, आई वुड हैव बीन एन एयर वाइस मार्शल। और मैंने सोचा जो लड़का 12 साल तक स्कूल नहीं गया और 30 ईयर्स में स्क्वाड्रन लीडर बना, और हमको क्या करना चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या है, आई शुड डू समथिंग बिग इन लाइफ। तो फिर हमने सोचा कि यार देन आई वेंट इन टू रीडिंग यू नो डिफरेंट वेदास, उपनिषद एंड भगवद गीता, देन कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, बहुत स्वामी जी से मिले और क्रिश्चियन फादर से मिले, और उसके बाद में पता चला कि यार हम वी शुड बिकम ए लाइफ कोच, मतलब लोगों को जिंदगी आराम से खुश से कैसे जीना मैं सिखा दूंगा, ऐसा बोल के हमने स्पीकर बना। मैंने फौज को रिजाइन कर दिया। फिर बाद में मैंने सोचा बड़े लोग ना सीखने के लिए तैयार नहीं है, और सब लोग बोलते हैं कि हमारा 30-40 साल हो गया, शादी हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मगर मेरे बिटिया है ना वो नहीं पढ़ती, मेरे बेटा है ना वो बिल्कुल इतना जिद्दी का किताब नहीं खोलता, इनका कुछ करो, ये हमारा फ्यूचर है। फिर हमने सोचा आजकल 65% पॉपुलेशन इज ऑफ यू नो इंडिया इज अबाउट यूथ, इनको क्या तकलीफ है, इनको अच्छा नंबर लाने का, ग्रेड्स लाने का, IIT क्रैक करने का, NEET एग्जाम क्रैक करने का, UPSC क्रैक करने का, बैंक में एग्जाम, ओके दे वॉन्ट टू क्रैक द बैंक एग्जाम। तो मैंने सोचा विदाउट मेकिंग टीचर्स क्राई, विदाउट मेकिंग पेरेंट्स क्राई, वो कैसे याद कर सकते हैं, वो भी हंसते गाते खेलते कूदते कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने इस फील्ड में आया, और ये 12 साल का जर्नी है मैं, और मैंने लंदन गया, कुछ मेमोरी सीखा, टेक्निक सीखा, फिर आया कुछ बहुत सारे किताब पढ़े, बहुत लोगों से मिला, और बच्चों को सिखाते सिखाते उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने क्या किया, एक छोटा सा मैनुअल जैसा टेक्निक बना दिया। और हम लोग क्या करते, हिंदुस्तान का हर सिटी हम लोग जाते हैं, जहाँ पे स्कूल में जब बच्चा पैदा होते है ना, मम्मी पापा ABCD सिखाती है, थोड़ा बड़ा होगा बोला बेटा ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, कभी मम्मी नहीं बोलती बेटा आपको एक ब्रेन है इसको ऐसे यूज करना, कभी मम्मी नहीं बताती। जब स्कूल में जाता बच्चा, मैडम शुरू करती है इंग्लिश, कन्नड़ा, मराठी एंड देन सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, 3 महीने हो गया, मिस बोलते कि बेटा अभी कल क्वार्टरली एग्जाम है, क्वेश्चन नंबर 3, 5, और 8 आएगा तो याद करके आना। तो बच्चा बोलता मैम कैसे मैं याद करूं, मैम बोलते कि मुझे भी नहीं मालूम तू जा। इसका मतलब घर में ना मम्मी, स्कूल में ना टीचर, दोनों नहीं बोलते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे नंबर 1 आ जाए। सो बच्चे बहुत सारे तकलीफ है मैडम पूरे हिंदुस्तान में, अभी आप देखते हो पेपर में पढ़ेंगे इतनो, हर 2 दिन में एक बच्चा IIT एग्जाम का वो टेंशन में, स्ट्रेस में, इवन दे आर कमिटिंग सुसाइड आल्सो। तो मैं ये मकसद दिया हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई बच्चा ना रहे कि वो सोचे कि मेरे एक सपना है, मेरे एक गोल है, मेरे एक एम है, और मुझे उसको हासिल करना मुश्किल हो रहा है, आई कैन नॉट डू, आई डोंट वांट हैव एनी बडी सच पर्सन। इसलिए वी ट्रैवल डिफरेंट प्लेसेस, एंड इसी वास्ते हम लोग अभी बेलगाम में हैं, अभी 250 बच्चे और 300 पेरेंट्स भी अभी मेमोरी सीख रहे हैं, ऐसा कि महीने में 20-25 दिन हम लोग हिंदुस्तान में, और अभी तक हम लोग 35 कंट्रीज में घूमा।
1: अच्छा।
2: आई टीच पीपल अबाउट मेमोरी, सो दिस इज आवर माई बिकम लाइफ पर्पस, ओके दैट्स व्हाट इज माई होल एम ऑफ दिस मेमोरी प्रोसेस।
1: ओके, यानी कि खुद ने जो कुछ भी झेला चाइल्डहुड में,
2: यस मैम,
1: वो बाकी के पेरेंट्स या फिर बाकी के बच्चे वो फेस ना करें, इसलिए आपने ये स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव युग में ये ही बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को कैसे डेवलप करें या फिर कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। और जैसे आपने कहा कि स्कूल में टीचर इतना इतना होमवर्क देती है, वो कैसे करते हो आपके ऊपर है। फिर कुछ लोग ट्यूशन लगाते हैं, कुछ लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छे नंबर्स नहीं आते कई सारे बच्चों के, तो वो नर्वस होते हैं और काफी डिप्रेशन तक भी बात जाती है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो पेरेंट्स हैं, उनको आप अभी मेमोरी स्किल्स सिखा रहे हैं या फिर वो कैसे डेवलप करें वो सिखा रहे हैं? और जैसे आपने बताया कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसको प्रिपेयर करते रहते हैं बच्चे, और वो क्रैक ना होने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हो या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हो, तो बहुत अच्छा एम है आपका, उद्देश्य बहुत अच्छा है।
2: थैंक यू सो मच।
1: और उसके लिए हमारे वेणु धुनी की टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका ये उद्देश्य ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही कई सारे बच्चों को, कई सारे पेरेंट्स को या फिर कई सारे लोगों को आप हेल्प करते रहे इस माध्यम की तरफ से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों की मेमोरी हम कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर आप सेमिनार लेते हैं, तो उसका कुछ एज लिमिट रहता है क्या कि इस एज ग्रुप के बच्चे जल्दी पिकअप ले सकते हैं या फिर इस एज ग्रुप के जो पेरेंट्स रहते हैं या फिर यूथ रहता है वो जल्दी पिकअप कर सकते हैं, ऐसे कुछ हम डिवाइड कर सकते हैं?
2: हाँ, हमने बहुत कुछ रिसर्च किया मैम। बेसिकली चिल्ड्रन ना फ्रॉम फोर्थ क्लास टू टेंथ क्लास जल्दी पिकअप कर लेते हैं उनका, स्पेशली जितना कम उम्र में हम उनको मेमोरी सिखाए उतना अच्छा वो लोग परफेक्ट कर पाएंगे। ओके सो तब क्या होता है मालूम है, जब हम लोग पीयू कर देंगे तो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं और आईआईटी कर रहे हैं, न कोई लॉयर है, न कोई कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ऑलरेडी सिलेबस इतना कुछ होता है, अभी ये कुछ टेक्निक सीख के उनको इंप्लीमेंट करना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है। बट जब छोटा बच्चा होता है ना उनके पास बहुत टाइम होता है एंड दे विल हैव एनफ टाइम टू प्रैक्टिस and perfect. और जब ये बच्चे when they start getting the benefit of this program and then they'll be able to apply, इसका मतलब जितना जल्दी जितना कम उम्र में हम बच्चों का memory सिखा देंगे that much better it will be for the parents also for the children also. Okay, and कम उम्र में अभी क्या होता है जैसे कि white paper है, हम लिखना बहुत आसान है, अभी कोई पेपर में कुछ हमने लिखा पेंसिल से उनको अभी इरेजर से हमको इरेज करके फिर दोबारा लिखना मेहनत पड़ता है। जैसे कि हमारा उम्र है 30-35 years, हमने एक मेथड हमने सीख लिया जैसे कि रट्टा मारना, बायहटिंग करना, जैसे कि आपने देखा होगा 3 Idiots मूवी में और चित्तू रामलिंगम की कहानी है ना, वो क्या करता है वो रट्टा मारता है बिना ब्रेन यूज करके। तो अभी उनको एक मेथड मालूम है, अभी नया सीखा रहे ना उनको अभी उसको अनलर्न करके इसको लर्न करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। छोटा बच्चा सफेद नो कागज जैसा जो हम सिखा देंगे ना एंड दे विल बी एबल टू लर्न। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट जितना कम उम्र में बच्चों को सिखा देंगे उतना अच्छा ग्रोथ होगा एंड दे विल रियली एंजॉय स्टडीज। मैडम ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा हिंदुस्तान में कि मुझे नंबर नहीं आता, मुझे पढ़ाई मुश्किल है, बिकॉज बच्चा टीवी देखने के लिए बोलते हैं ना 4-5 घंटे बैठते हैं। अभी वर्ल्ड कप T20 मैच हुआ रात को 1:30 तक बच्चे बैठ के देखते हैं और किताब खोलने के लिए बोलते बोलता 2 मिनट नहीं बैठते ही ना मैडम। इसका मतलब क्या है, बच्चा बैठ सकता है, उनको अच्छा इंटरेस्ट है तो उसमें मजा आता। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करो, ऐसा कोई हार्ड वर्क करके तो आप कारण नहीं कहते, हार्ड वर्क करके तो फुटबॉल नहीं खेलते, हार्ड वर्क करके टीवी नहीं देखते, हार्ड वर्क करके तो हम लोग वीडियो गेम नहीं खेलते, ये हार्ड वर्क क्यों करना? नो, कैन यू रियली प्ले विथ योर बुक्स ना? ओके, कैन यू मेक योर बुक एज योर आपका फ्रेंड बना सकते हो? कैन यू रियली एंजॉय रीडिंग ना? See if you can make that right, बच्चों को कभी पढ़ाई करो वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ता मैडम। बिकॉज एक जमाना था जब हम छोटे थे 35% मार्क्स आ गया, पास हो गया, नौकरी मिला, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गया, अभी 60-40 साइट में हम लोग घर बना दिए, एक कार भी हो गया। अब देखिए इंडिया हिंदुस्तान पूरा दुनिया में नंबर 1 पॉपुलस कंट्री, हम लोग चाइना को भी ओवरटेक कर दिया। अभी सोचो 10-15 साल के बाद हमारा कंपटीशन बगल वाला स्टेट से नहीं होगा मैडम। हम भी कभी कोई जर्मनी वाला, कोई जापान वाला, कोई रशियन वाला, कोई अमेरिका वाला, कोई इंग्लैंड वाला, अभी ऑनलाइन में लोग काम करते हैं। मतलब यहाँ फ्लाईओवर करना है, वो अमेरिका वाला डिजाइन दे रहा तो इसका लोग जाते हैं ना। तो सोचो 10-15 साल के बाद हमारा बच्चा जब कंपटीशन करेंगे चाइना वाले के साथ, उनके लिए व्हाट शुड ही हैव विथ हिम नो? जो स्कूल में तो हर पर्सन, आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेस पर्सन हो, पैसे वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, इंक्लूड रिक्शा वाला भी, वही सोचता है कि हमने ठीक से नहीं पढ़ा किया, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम चले जाए और फीस हम लोग भरेंगे, हम लोग भूखे रहेंगे। वो तो हर आदमी करता है, उसके अलावा कुछ और सिखा देंगे क्या? एक जो मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, हाउ टू रीड फास्टर, हाउ टू रिमेंबर नो, ये भी इनको हम सिखा देंगे तो दे विल हैव एक्स्ट्रा वेपन एंड देन दे कैन फेस एनी कॉम्पिटिशन। सो एवरी पेरेंट शुड गिफ्ट दिस पर्टिकुलर स्किल टू चिल्ड्रन और हर स्कूल इसको एक पार्ट ऑफ द सिलेबस में पढ़ाना होगा। अभी क्या मिस बोलती लेसन पढ़ाती है ना मैडम, पढ़ाने के साथ साथ ना आपने समझा दिया, उसके बाद ना इसको जो समझाए ना वो कैसे याद कर सकता, वो मिस बोल सकते हैं, तो बच्चा घर में आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, हमको ट्यूशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। एंड बच्चा वो आर्ट करेगा, स्पीकिंग सीखेगा, मम्मी को किचन में हेल्प करेगा, पापा को घर का काम में हेल्प करेगा, दादी माँ को मंदिर लेकर जाएगा, दादाजी को पार्क में ले जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, मतलब ही विल बिकम ऑलराउंडर नो। तो ये बचपना हम लोग ना ये रैंक का चक्कर में हम लोग उसे छीन रहे, मतलब 24/7 मतलब स्कूल जाएगा ना आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, किताब खोलेगा, ना उसका ना खेलने का टाइम, ना कूदने का टाइम, ना कोई फंक्शन अटेंड करने का टाइम, कुछ करने का टाइम। तो इसलिए क्या होता है, अभी जब आप जिंदगी में ना देखेंगे ना क्या है जिंदगी में, बस पढ़ाई कर रहा था मैं, नौकरी कर रहा था, फिर शादी किया, बच्चा पैदा किया, जिंदगी कभी मजा लिया क्या, कभी एंजॉय किया क्या, कुछ कुछ कर दिया क्या, वो टाइम नहीं है। सो टाइम इज वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ जिंदगी में। तो विदाउट मी ऑल्सो आप कुछ भी कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू समथिंग डिफरेंट, ओके। अब देखिए मैडम, भगवान ने हम सबको दो पैर दिया, जाओ कहीं तो पैदल जा सकते हैं ना, जाना ही तो पैदल, तो फिर बैलगाड़ी क्यों, साइकिल रिक्शा क्यों, बाइसिकल क्यों, स्कूटी क्यों, बाइक क्यों, ऑटो रिक्शा क्यों, कार क्यों, मेट्रो ट्रेन क्यों, एरोप्लेन क्यों? बिकॉज हम बेलगावी से दिल्ली में जाना 3 घंटे में हम जा सकते हैं एरोप्लेन में, अभी हम लोग पैदल जाना कितना दिन लगेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जब हमारा ब्रेन है जो भगवान ने दिया, इतना अच्छा गैजेट दिया, इतना अच्छा सुपर कंप्यूटर दिया, इसको यूज करना सीख लेना, और सीखने के बाद क्या बोलता है, बस कुछ भी किताब होगा आप आराम से याद कर सकते हो मैडम। हम लोग वही नो कर रहे हैं एफर्ट कि बच्चों को हम लोग सिखा दें, जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना स्कूल में समझो, और हमारे साथ सीखो कैसे याद करने का, तब एग्जाम बहुत आसान होगा मैडम।
1: तो आपका क्या मानना है कि आपके जो कुछ टेक्निक्स है वो सीखने के बाद में बच्चा जो स्कूल में सीखता है वो इमिडिएटली याद कर पाएगा, एग्जाम में उसको दिक्कत नहीं होगी?
2: बिल्कुल नहीं होगा, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी इट विल बिकम, बिकॉज हम सिखाते हैं ना, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा कैसे याद करने का, या कोई भी नंबर्स होगा, न्यूमेरिकल डेटा, हमने एक मेथड इन्वेंट किया फोनेटिक मेथड, वो कैसे याद करके, जैसा कि हिस्टोरिकल ईयर्स होगा, कॉन्स्टेंट्स होगा, नहीं तो बॉइलिंग मिल्क टेम्परेचर होगा, अभी ये बेलगाम सिटी का पॉपुलेशन कितना, लोकसभा कितना में कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी नंबर याद करना कैसे करना पड़ेगा, नहीं तो कोई श्लोक याद करना पड़ेगा, कोई गाना याद करना पड़ेगा, कोई मंत्र याद करना पड़ेगा, कुछ भी चीज ना, हर एक मेथड हमने डेवलप किया, और बच्चा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन, एक बार सीख लेगा ना, थोड़ा उनको मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा मदद करेंगे ना, तो दे कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड दे कैन लर्न मैडम।
1: तो ये टेक्निक सीखने के बाद में इसको हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए, या फिर एक 8-10 दिन का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया तो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा?
2: नो, प्रैक्टिस करना मतलब देयर इज नथिंग टू डू स्पेशल प्रैक्टिस, आपने जो सीखा ना एंड उसको टेक्स्ट बुक में अप्लाई करना होगा, और उसके लिए कोई जबरदस्त नहीं होता, बिकॉज जब आपको कार चलाना आता है, यू लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार, 1 हफ्ता लगा आपको, 1 महीना लगा, लाइसेंस मिला, अभी आपको 1-2 चॉइसेस है, यहां से आप बेंगलोर पैदल जा सकते हो, कार में जा सकते हो, कार आपके पास है, लाइसेंस है, आपको आते हैं ड्राइव में, तो आप क्या सोचते हो, कार में जाऊंगा ना, आसान होगा ना, ओके। सो व्हेन दे नो, जब हमारे पास आसान मेथड है तो कष्ट क्यों करने का, सो जब अप्लाई करेंगे ना, दैट ओनली विल बिकम नो प्रैक्टिस हो जाता, नो नथिंग टू डू फर्दर, मगर लिटिल बिट नो द वेरी फैक्ट दैट दे प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ दिस टेक्निक्स नो दे बिकम वेरी एक्टिव। अभी विराट कोहली क्रिकेट पता नहीं पिछले 10-15 साल से खेल रहा है, अभी भी सुबह उठ के वो रनिंग करता है, वो कैच प्रैक्टिस करता है, विकेट्स के बीच में दौड़ना प्रैक्टिस करता है, बैटिंग प्रैक्टिस करता है, और रवि शास्त्री का, सुनील गावस्कर का, अभी वो ही विल टेक एडवाइस आल्सो हाउ टू नो हिट द बॉल। तो ऐसा है ना, हम लोग उनको जिंदगी भर सपोर्ट करते हैं एक कोच का तरह से, तो तब क्या होता है, as they go to higher classes, no, they know how to apply different techniques. Okay, so ऐसा हम लोग support करते रहेंगे, 2-3 साल के बाद they will not need anybody's help, खुद वो लोग जान पाएंगे कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये टेबल है, ये डेफिनेशन है, हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। आजकल मैडम आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बच्चे हमको सिखाते हैं कि सर ये मेथड नहीं, सर आप गलत है, सर ये करो, सर बहुत आसान होगा। एंड बच्चे मैडम सो क्रिएटिव, ओके,

0: सो सो ब्यूटिफुल ओके, बिकॉज हम लोग बड़े लोग ना, हम लोग सोचते हैं ना कि एक ही रास्ता होगा, बच्चों को ना दे आर टोटली अनकंडीशन, बोलते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा क्यों, उसी में होता है मैडम कुछ नया चीज का इन्वेंट करने का. सो हिंदुस्तान इज अ ग्रेट कंट्री मैडम, और बच्चे तो दे आर सो पावरफुल ओके. और मैं जो कुछ मैं सच बोलूं तो मैं बच्चों से मैंने सीखा ओके. और बिकॉज वो बच्चे हर जगह नहीं जा सकते, हमने उनसे सीखा और हमने खुद अपना ब्रेन अप्लाई किया और उसको एक मैनुअल बना के हमने सिखा रहे ओके. सो अवर चिल्ड्रन आर सो ग्रेट और हिंदुस्तान तो सबसे आगे.
1: बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने. और जैसे बच्चों से आगे अगर हम सोचते हैं तो यूथ जनरेशन जो रहता है उनके दिमाग में काफी कुछ अलग अलग चलते रहता है, क्योंकि एज भी फैक्टर करता है, तो उस हिसाब से उनका दिमाग बहुत सारी जगह पे घूमता रहता है. तो वो अगर कॉन्सेंट्रेट उनको करना है एक जगह पे, तो उसके लिए भी कुछ आपका ट्रेनिंग हेल्पफुल होता है?
0: यस मैम, कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कि मेनी पेरेंट्स बोलते हैं कि जब मैं छोटा था बहुत अच्छा था, घर से स्कूल, स्कूल से घर. आजकल का बच्चे बिगड़ गए. हम लोग सब लोग वही सोचते हैं ना. अब जो अभी अपना वेणुध्वनि अपना प्रोग्राम सुनने वाला भी वही सोच रहा होगा कि जब मैं अच्छा था मेरा बच्चा ओके ठीक नहीं है, वो पूरा हमेशा टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर लगा रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है. हम अच्छे थे क्योंकि बिगड़ने का चांस नहीं था. अभी देखिए मैडम, इतना सारा OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है ओके, एंड देन Zee5 है, सोनी लिव है, डिस्नी हॉटस्टार है, इतना सारा चांस है ना. अभी IPL खत्म हो गया, वर्ल्ड कप T20 खत्म हो गया, अभी इंडियन टीम हैज गॉन टू प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे के साथ अभी T20 गेम खेलने का. हर दिन एक मूवी आता रहता है, वीडियो गेम्स है, एंड देन यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इतना कुछ दुनिया बदला ना. तो यू कैन नॉट एस्केप नो नाउ डिस्ट्रैक्शन है इनका. और जब टीनेज आते हैं ना, और जो मोर देन घर में अपना दोस्त को देखेगा स्कूल में कॉलेज में, जब वो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेलें? इसका मतलब मेरे मम्मा पापा कर रहे हैं. मेरे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि इसलिए जैसे मैं सर हम लोग ना हमारा घर में केबल टीवी कट कर दिया, इवन हम लोग आईफोन भी यूज नहीं करते, ओनली वो जो पुराने जमाने का वो फोन यूज करते. अभी मैडम ऐसा है, वो गौतम बुद्ध का पिताजी को भी ऐसा मालूम चला था जब बच्चा पैदा हुआ कि कोई बोला कि वो बच्चा सेंट बनेगा, सेज बनेगा, वो कोई वो बाबा जी बनेगा. तो बच्चे को एक महल में बंद करके रखा कि वो किसी का दुख ना देखे, किसी का मौत ना देखे. मगर ये बच्चे एक दिन वो अपना विंडो के साथ ना देखता है एक ओल्ड मैन वॉकिंग और एक डेड बॉडी गोइंग, सोचता है कि ये जिंदगी है क्या. नो ही विल बिकम गौतम, ही वेंट ऑन टू बिकम गौतम बुद्ध ना. इसलिए इससे हम लोग छुपा नहीं सकते, इसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते. हम लोग एक आइलैंड में तो नहीं जी पा रहा ना, तो कितना दिन बच्चों को ऐसे कैद करके रखेंगे बच्चों को. मैं ये बोल रहा हूँ पेरेंट्स को जो अपना प्रोग्राम सुन रहे कि ये तो रहेगा, दिन ब दिन और कुछ टेक्नोलॉजी आएगा, और कुछ गैजेट्स आ जाएगा. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ओके, मेरा बच्चा फिर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए तो उसका क्या प्लान है क्या? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग नो. यू कांट एस्केप नो. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मोबाइल देगा, टीवी होगा, इंटरनेट होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, टिकटॉक होगा, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा बच्चा फिर भी क्लास में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उसके लिए टेक्निक होना चाहिए ना. तो दैट गोल, दैट एम्बिशन, दैट ड्राइव, दैट पैशन बच्चों में एक चाहत, मतलब उनका जिंदगी में क्या बनने का ओके. नाउ यू शुड इंस्पायर दैट बॉय सो दैट ये सब तो मेरा टूल्स है, ये टेक्निक्स है, देर गोइंग टू हेल्प, बट मेरा मकसद कुछ है जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का. जैसा कि मोदी जी चाय वाले से प्राइम मिनिस्टर बना, नो अब्दुल कलाम जैसा कि एक साइकिल में पेपर बेचने से प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बना, धीरूभाई अंबानी जो पेट्रोल बेचता था पेट्रोल बंक में, इतना बड़ा आदमी बना. हम कैसे बने, उसके लिए मैं अपना टाइम कैसे प्लान करूं? इफ दे अंडरस्टैंड एंड उनको एक अच्छा रोल मॉडल मिलेगा, एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा. बच्चे तो कोई बच्चा नहीं बोलता दुनिया में कि माँ मैं स्कूल में लास्ट आना चाहता हूँ, माँ मैं एग्जाम में फेल होना चाहता हूँ, माँ आपको मैं रुलाना चाहता हूँ. ऐसा कोई बच्चा अपने कोई कमकरस एनीबडी लाइक दैट? नहीं ना, बच्चे तो अच्छे हैं. हमको नहीं मालूम उनको बच्चों कैसे इंस्पायर करना. ओके, इफ यू डू दिस नो वी कैन डू मिरेकल्स मैडम, एंड कॉन्सेंट्रेशन कर पाएंगे बच्चे 100% कर पाएंगे.
1: एग्जैक्टली सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ काफी सारे भी टूल्स हमारे हाथ में है, या फिर इजीली हम कुछ भी चेक कर सकते, या फिर हमारे मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल रहता है, इतने सब कुछ प्लेटफॉर्म हमारे पास रहने के बावजूद भी टीनेज एज के जो स्टूडेंट रहते हैं या फिर बच्चे रहते हैं वो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना.

0: जरूरी है
1: Absolutely.
0: और इसके लिए आपकी तरफ से बहुत अच्छी तरह से हेल्प हो जाती है और आप करते भी है। शो के एंड में हम कुछ ऐसे टिप्स बता देंगे कि जिसको फॉलो करके वो थोड़ा अपना लाइफ इजी करे, बट आगे चल के हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो टीनेजर्स की बात हो गई, तो काफी अभी ये जो 35-45 एज ग्रुप के लोग है वो भी अभी से कुछ बातें ऐसी है जो भूलते आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे फ़ोन बुक में यानी कि फ़ोन में हमने किसी का नंबर सेव किया है, कई दिनों के बाद में अगर हम वो सर्च करने जाते हैं तो वो किस नाम से सेव किया है वो भी हमें याद नहीं रहता
1: तो
0: ये काफ़ी मैंने सुना है कई बार कि ऐसे हो जाता है कि किस नंबर से वो सेव किस नाम से सेव किया है उनका नंबर वो याद नहीं आता, तो पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ऐसे होता क्यों है।
1: ये होता क्यों? बिकॉज ब्रेन का एक फॉर्मूला है मैडम, यूज इट और लूज इट। ओके, आप यूज करते रहेंगे तो ब्रेन का अंदर सेल्स रहेगा, नहीं तो जेल चले जाएगा। अभी लुक एट माय हेयर, अभी मैं अपना बाल कट करूंगा तो अगेन दे विल ग्रो, इफ आई कट माय नेल्स अगेन दे विल ग्रो, मेरा स्किन निकलेगा फिर दोबारा स्किन आ जाएगा। ब्रेन के अंदर जो सेल्स है ना, एक बार मर जाएंगे तो दोबारा पैदा नहीं होगा। ये आपको हम सबको जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, जो है उनको वी हैव टू प्रोटेक्ट देम। हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, हमको हमेशा कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ता रहता है, किताब पढ़ना रहता है, कुछ ना कुछ जानना। नो, वी शुड कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, वी हैव टू कीप ऑन यूजिंग आवर ब्रेन। सो मोस्ट पीपल स्पेशली द वुमेन और पीपल जो बिजनेस में सेटल होता है ना, तो जो कल किया सो आज किया सो फिर अगेन दोबारा, मतलब नए चीज कुछ हम लोग नहीं सीख रहे और घर से ऑफिस अगर सेम रास्ता आते हैं, सेम काम करते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो सेल्स जो है ना सोचता है कि मेरी जरूरत नहीं है, तो दे स्टार्ट डिटोरेटिंग। जैसे कि आपका अपने घर में किचन में एक चाकू है, नाइफ है, हम यूज नहीं करेंगे 6 महीना, ब्लंट हो जाएगा, तो इसको यूज करने से विल बी बेटर नो। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा ना जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, कुछ नई चीज सीखता रहना चाहिए, एंड यू शुड कीप यूजिंग दैट, देन दे विल हैव गुड मेमोरी। अभी WHO का रिपोर्ट है कि पूरा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया में 40 साल से ज्यादा जिसका उम्र है 80% ऑफ देम ये अल्जाइमर डिमेंशिया का शिकार है। मतलब जैसे कि वाजपेयी जी का 5 साल बिफोर उनका देहांत से पहले उनका याददाश्त बिल्कुल चला गया, उनको नहीं मालूम था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको नहीं मालूम था उनको भारत रत्न दिया था, वो था मगर नहीं था। रोनाल्ड रीगन द फार्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट, पिछले 2 साल बिफोर उनका डेथ ना अपने बीवी नैन्सी रीगन को ही कुड नॉट इवन आइडेंटिफाई। और सब लोग ऐसे है, कुछ लोग अपने घर का एड्रेस बोलते हैं क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग। एक तो स्ट्रेस है और स्ट्रेस से ओवरकम करने का नंबर 1। नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप नो लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ योगा करो, कुछ एक्सरसाइज करो, पहले बॉडी फिट रखो और ऑटोमेटिकली ब्रेन फिट रहेगा। और कभी कभी सुडोकू पजल सॉल्व करो, क्विज क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करो, किताब पढ़ो, कुछ नया स्किल सीखो, बड़े लोगों से बात करो। जैसे कि हमारे जो श्रोता हैं जो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं वो काम में बिजी है, फिर भी कुछ जानने की जो चाहत है ना, दिस वन क्वालिटी हमारा 90.4 FM का जो भी श्रोता है ना, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस वर्क, तो वी आर इन द राइट पाथ। ओके, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो बोलेगा मैं गाना सुन रहा हूँ, ये जयसमा कौन है, ये मलेशिया मैम कौन है, ये मेमोरी क्या चीज है, हमको जरूरत ना चाहिए, तो कुछ जा सकता है ना, स्विच ऑफ कर देते। मगर कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ, ये जो चाहत है ना मैडम, दैट इज एनफ फॉर यू। सो एज लॉन्ग एज वी हैव गॉट, ऐसा हमारा जो ऑडियंस है, हमारा जो प्रोग्राम सुनने वाला वेणुध्वनि का, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल आर द राइट पाथ टू हैव गुड मेमोरी टिल वी आर अलाइव।
0: ओके, यानी कि हमें हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, हमारी मेमोरी को थोड़ा काम देते रहना चाहिए।
1: yes, ब्रेन को यूज करना,
0: तभी ये एक्टिवेट रहेगी हमेशा और हम जो भूलने की मतलब बीमारी हमें लगी रहती है उससे थोड़ा बाहर निकल सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली राइट मैम।
2: दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। स्क्वाड्रन लीडर जय सिम्हा की सिद्धियां एक शो में हम इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए अगला भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। फिलहाल आज हम आप सभी से विदा लेते हैं। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपने हुनरों को तराशने की कोशिश कीजिए। सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनासू।
3: KLE कैंसर हॉस्पिटल बेळगावी
4: प्रप्रथम बारिगे उत्तर कर्नाटकद बेळगावी

गुड इवनिंग आन, नमस्कार दोस्तों, आप आए, बाहर आई, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, अरे मेरा मतलब है स्वागत है आपका हमारे शो बी रिलैक्स में। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। इन टुडेज एपिसोड वी गोना एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर एंड शेयरिंग प्रैक्टिस एंड शेयरिंग प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मेंटेनिंग इमोशनल वेलबींग। आज के इस एपिसोड में हम ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाए, जिससे आपको भी एक बेटर वे मिले बात करने का। सो सिट बैक एंड रिलैक्स और सुनते रहिए हमारा शो वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक तुम्हारा शादी मत करना।

एंड वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में। लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा टुगेदर। वी विल बी डिस्कसिंग मोर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प। दोस्तों जैसे फिजिकल हेल्प इज इम्पोर्टेंट, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है हमें अपनी डेली रूटीन परफॉर्म करने में और उनको समझने में। एंड टू बिल्ड रिलेशन एंड स्टे पॉजिटिव वी नीड आवर मेंटल हेल्थ टू बी परफेक्टली फाइन। चलिए बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की कुछ रंग बिरंगे गानों के बाद। बने रहिए हमारे साथ ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा, शलावत।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु विद आरजे आयुष। आज का हमारा जरूरी टॉपिक मेंटल हेल्थ पर चर्चा चल रही है। मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताता हूं जो आ सकते हैं शायद आपको अगर आप मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर जिसका मतलब होता है आपके मूड स्विंग्स होते रहना, आपके मूड में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं। स्किजोफ्रेनिया, इस शब्द का मतलब होता है कि आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सब चैलेंजेस आप फेस करते हैं अगर आप किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो। और भी कई सारे एंड मेनी मोर, ये सारी कंडीशंस किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। बात करेंगे आगे हाउ यू कैन सीक हेल्प फॉर ऑल दिस कॉसेस आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स। बने रहिए ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु।

दोस्तों, अगर आप किसी भी कंडीशंस में से गुजर रहे, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से या कंडीशन से गुजर रहे जो आपकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा असर डाल रही है जिससे आप परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, हमेशा हेल्प लेने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी मानसिक तनाव में हैं, आप चाहे तो आपके दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपके परिवार से बात कर सकते हैं, और फिर आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं और काउंसलर्स भी हो सकते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं और सपोर्ट मांग सकते हैं जो आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट देने में बहुत मदद करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आपका रिलीज कर देता हूँ आपको कुछ एंटरटेनिंग सॉन्ग सुनाकर, तो आपका मूड एकदम हल्का हो जाएगा। और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु, मेरे यानी आपके प्यारे दुलारे आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, आजकल इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी देयर इज अ स्टिग्मा अबाउट मेंटल हेल्थ, एक कंडीशन बनी हुई है लोगों के दिमाग में। हमें खुद को और दूसरों को इस विषय पर एजुकेट करना चाहिए। शोइंग एम्पैथी एंड स्पीकिंग ओपनली अबाउट मेंटल हेल्थ कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन बैरियर्स, और आप मदद कर सकेंगे एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करने में। हमें पब्लिक में भी ऐसे अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों का जो मिसकंसेप्शन होता है उसको खत्म करना चाहिए, और लोग ओपनली इस बारे में बात करेंगे और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे अगर आप उनका मिसकंसेप्शन जो है वो खत्म कर देंगे। और अब करेंगे हम एक छोटा सा सॉन्ग ब्रेक। सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

Hello and welcome back, listeners, to your favorite show, Be Relax, only on Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu. मैं RJ आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ और हमारी बात हो रही है एक बहुत ही जरूरी टॉपिक मेंटल हेल्थ पर. आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ टू बिकम मोर फोकस्ड व्हेन यू आर सफरिंग थ्रू दिस. इंगेजिंग इन सेल्फ प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस, एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप और आप अपने हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हैं. आपकी मेंटल हेल्थ इससे हमेशा हेल्दी रहेगी. आप अपने परिवार के साथ या जो आपके करीबी है उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिए, जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा. आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे उनसे. एंड इट्स टाइम टू मेक यू ऑल लिसन सम सुपरहिट सॉन्ग्स. सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू.

0: दोस्तों, आप जहां काम करते हैं मींस योर वर्क प्लेस, आप वहां पर भी किसी से बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कैन बी बेटर इन अ वर्क प्लेस, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। क्रिएटिंग मेंटली हेल्दी वर्क प्लेसेस एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉइज वेलबींग कैन इनहेंस प्रोडक्टिविटी, जी हां, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल वर्क एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा अगर आपके एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें खुश रखिए थोड़ा सा, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अच्छा काम करिए और अपने बॉस को खुश रखिए, तो आपका तालमेल वहां पे जो है थोड़ा बना रहेगा। और इसी खुशी को दुगना करेंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने सुनने के बाद। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।
1: प्लीज शादी मत।

हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स विद आरजे आयुष ओनली ऑन वेनु 90.4 केएलई खनसु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वास्ट टॉपिक पर जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं, यानी मानसिक डिसेबिलिटी पर या मेंटल हेल्थ पर या मानसिक तनाव के ऊपर। दोस्तों आप अगर इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो प्लीज हेल्प लीजिए। मेंटल हेल्थ इज वेरी नॉर्मलाइज एंड ट्रीटेबल, ये बहुत नॉर्मल है और इसको बहुत अच्छे से स्पेशलिस्ट द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। तो प्लीज आपके परिवार, आपके दोस्त या जो भी आपके दिल के करीब है उनसे बात कीजिए इस बारे में, इसे छुपाए नहीं। दोस्तों अगर आपको जिंदगी खुलकर जीना है, लाइफ में अगर आपको स्ट्रेस है तो खुशियां भी जल्दी आएगी। मतलब अगर आप लाइफ में किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, आपको स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है लाइफ में, तो टेंशन मत लीजिए, खुशियां बहुत जल्दी आएगी। हमेशा याद रखिए, ऊपर वाला अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बंदा झेलने के काबिल होता है। तो अगर आप में इतनी प्रॉब्लम्स है तो आप इस काबिल है और आप इस दौर से बड़ी ही जल्दी गुजर जाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा नहीं है, तो अपना स्ट्रेस को कर दीजिए छू मंतर। इट्स लाइक अ टेस्ट हाउ यू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू नो एग्जाम पेपर जैसे होता है, आप एग्जाम में जैसे एग्जाम देते, इट्स सिमिलर टू दैट। इफ यू हैव स्ट्रेस यू विल गेट ओवर इट। बस खुद को अकेला ना समझे, मस्त मौला रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 केएलई कनसु। मिलेंगे बहुत ही जल्द कुछ और टॉपिक्स और स्टोरीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार को थोड़ा वक्त दीजिए, मजे कीजिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये।

बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके